ना दुनिया के लिए लिखते ना मेरे लिए लिखते, ना दुनिया के लिए लिखते ना मेरे लिए लिखते, गालिब जिंदा होते तो तेरे लिए लिखते, गालिब जिंदा होते हैं

0: बातें देखना बंद कर, तुझे नहीं मिलने वाली वो।
1: एक दिन यहाँ पे सर रखेगी और कहेगी हेलो फ्यूचर,
0: नो चांस, शी लाइक्स हॉट कार्स एंड बैड बॉयज, तू क्वालिफाई नहीं होता।
1: इवन आई कैन बी अ बैड बॉय, ओके?
0: या, इन योर ड्रीम।

0: गट की धड़कन कैसी होती है सुन रही थी। ड्यूटी पे सोने के लिए 2 हफ्ते का सस्पेंशन और 2 हफ्ते का पे कट।
1: हेलो, नाउ दैट यू जॉबलेस, हाउ अबाउट डिनर एंड डांस टुनाइट?
2: Is that a trick question?
1: No. I mean, I like bad boys who dance. So...
2: Yes.
1: Okay, see you.
2: Yes.
1: Hey! एड्रेस नहीं पूछोगे?

0: to do this. मुझे जाना होगा. I'm not breaking up with you. Rina, look at me, यार. मुझे बस थोड़ा वक्त चाहिए. मेरे लिए नहीं, हमारे लिए.
1: कबीर, पर मेरा क्या?
0: I promise I won't leave you. Won't let you down. And I love you.

0: Sir, there is an emergency. A patient is very serious. Accident हुआ है. काफी blood loss
1: हुआ है. Doctor Ujjav को heal attend it. मुझे जरा घर जाना पड़ेगा.
0: Sir, there is an emergency case of Meher Garewal. Accident है.
1: क्या नाम बता?
0: Meher Garewal.
1: मुझे ले चलो.
0: Come.

फिलहाल तो यूँ है कि कुछ कर नहीं सकते, तेरे बिन ही मरना होगा, साथ मर नहीं सकते। सूखे से पत्ते हैं एक टहनी पे लगे, किस्मत तो देखो कि झड़ नहीं सकते। फिलहाल तो यूँ है कि कुछ कर नहीं सकते।

0: गोर्खा जिल्लाकै विश्वासिलो सुन चाँदी पसल
1: नारायण सुन चाँदी पसल बैंक रोड बस पार्क गोर्खा। फोन नम्बर 064-24-670, मोबाइल नम्बर 98-460-56-238।

0: extreme energy drink.
1: विज्ञान पोलिक्लिनिक सेन्टर प्राली अर्याल मेडिकल हल गोर्खा नगरपालिका साथ नयाँ बजार गोर्खामा स्वास्थ्य परिषद सम्बन्धी सूचना।